0: लीजिए सोनू, सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाप्त फरमाइए।
1: तुर्किया ने यूरोपीय पार्लियामेंट की तजवीज पर सख्त रद्दमन पेश किया और कहा कि हम तुर्क मुसलह फौज के खिलाफ बहुतान तराजियों की मजम्मत करते हैं।
0: तुर्की कौमी इंटेलिजेंस तंजीम मित के सरबराह इब्राहिम कालन ने एथेंस में यूनान के कौमी इंटेलिजेंस सर्विस EYP के सरबराह थेमिस्टोकेलिस थेमेरिस से मुलाकात की है।
1: इसराइल के इंतहा पसंद वजीर बिन गवीर ने गजा से 18 लाख फलस्तीनियों की नस्ली सफाई करने का मंसूबा पेश किया है।
0: इसराइली ज़राए अब्लाग की शाया कर दो खबरों में कहा गया है कि अगर नौजवान अमरीकी ईरान पर हमले में शामिल होने पर राजी हों तो अमरीका उनके कर्ज माफ कर देगा।
1: बरतान शहरी तंजीम ने हुकूमत से मुतालबा किया है वो इसराइल के हवाले से अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाए।
0: और अब खबरें तफसील के साथ।
1: तुर्किया ने यूरोपीय पार्लियामेंट की तजवीज पर सख्त रद्दमल पेश किया और कहा कि हम तुर्क मुसलह फौज के खिलाफ बहुतान तराजियों की मजम्मत करते हैं। तुर्किया ने यूरोपीय पार्लियामेंट में मसला कब्रिस के हवाले से तुर्क मुसलह फौज को निशाना बनाने वाले बहुतान तराजी पर मबनी एक यादगारी मनसूबे के लिए एहतियात मुख्तस करने की तजवीज़ की मजम्मत की। तुर्किया वजारत खारजा के जुमेरात को जारी करदा बयान में कहा गया है कब्रिस की यूनानी इंतजामिया के पेश करदा दावे तारीखी हकायक को मस्क करते हैं और इन्हें सियासी रंग देते हैं। बयान में मजीद कहा गया एक मसला कब्रिस के हल में किरदार अदा करने के बजाय यूरोपियन के इदारे गैर जानबदारी और इंसाफ के असूलों से इनहराफ कर रहे हैं। यूनानी कब्रिस्तानिया के लिए प्रोपागंडा आला बन रहे हैं और जजरे की दोनों बरादरियों के दरमियान इतमाद को कमजोर कर रहे हैं।
0: तुर्की कौमी इंटेलिजेंस तंजीम मित के सरबराह इब्राहिम कालन ने एथेंस में यूनान की कौमी इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह थेमिस्टोक्लेस थेमिरस से मुलाकात की है। तुर्की सिक्योरिटी ज़राए से मौसूल मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते तय पाने वाली मुलाकात के दौरान दोतरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और मसाइल के हल के लिए उठाए जाने वाले मुमकिन इकदाम का जायजा लिया गया है। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया है कि बहेरा एजियन और मशरकी बहेरा रूम नेटो की सलामती इंटेलिजेंस तआवुन दहशतगर्दी मुनज़्ज़म जराइम गैर कानूनी नकल मकानी और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जद्दोजहद के शुबों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात इंतहाई अहमियत रखते हैं। इस मौका पर ईरान अमरीका जंग शाम में नए दौर के आगाज लीबिया की सियासी वहादत फलस्तीन के मसले गजा और मगरबी किनारे में इसराइल की तरफ से जारी खिलाफ वर्जियों और कब्जा पॉलिसियों नीस शाम और लुबनान के खिलाफ इसराइली हमलों पर भी तबादला ख्याल किया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों के खिलाफ जद्दोजहद के हवाले से हालिया अरसे में हासिल होने वाली पेशरफ्त को मजीद तेज करने और इसे तस्वीराती सतह तक ले जाने की जरूरत पर भी इतफाक किया गया है। तुर्की खुफिया एजेंसी के सरबराह इब्राहिम कालन और यूनान खुफिया एजेंसी के सरबराह थेमिरिस ने दोतरफा और इलाकाई मामलों में दोनों इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान करीबी तआवुन को मजीद मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया है।
1: ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने मुल्क में ईंधन की कीमतों में इजाफे की वजह ईरान की तजारती जहाज पर फायरिंग कहने वाली अमरीकी इंतजामिया के बयान के जवाब में कहा कहानी शुरू से बताएं मत बोलें ये जंग आपने ही छेड़ी थी। इब्राहिम अजीजी ने अपने सोशल मीडिया पैगाम अमरीकी नायब सदर जेम्स डेविड वेंस के तेल की कीमतों में इजाफे के लिए ईरान को मोड़ते इल्जाम ठहराने वाले एक बयान का जवाब दिया। अमरीकी नायब सदर वेंस ने कल व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ईंधन की नरखों में तेज इजाफे की वजह ईरानियों की तजारती जहाजों पर फायरिंग है। ईरान अमरीका इसराइल के 28 फरवरी के हमले के बाद शुरू होने जंग के दौरान अपने हुक्म से गुजर को बड़ी हद तक महदूद कर दिया था।
0: एक इसराइली अखबार में शाया कालम में दावा किया गया है कि अगर नौजवान अमरीकी ईरान पर हमले में शामिल होने पर रसी हों तो अमरीका उनके कर्ज माफ कर देगा। राकम का इस्तदलाल है कि ईरान के खिलाफ जंग महज फजाई बम्बारी से नहीं जीती जा सकती बल्कि मुल्क पर कब्जा या कंट्रोल जरूरी होगा जिसके लिए या 15 लाख तक फौजियों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये चौंका देने वाली तजवीज़ के नौजवान मकरूज अमरीकियों को ईरान के खिलाफ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए AJ जॉफ नामी एक रिटायर्ड अफसर ने दी है जिन्होंने कैनेडियन मुसलह फौज में खदमात सर अंजाम दी थी और यह राय उन्होंने यरूशलम पोस्ट में शाया अपने कॉलम में पेश की है। अपने दलाइल में जॉफ ने कहा है कि महीनों पर महीत अमरीकी कार्रवाइयों के बावजूद ईरान की अस्करी सलाहियत तबाह नहीं हुई और जंग ख़त्म नहीं हुई और ज़मीनी हमला मौजूदा अमरीकी फोर्सेस से कहीं ज़्यादा फौजी दस्तों का तकाजा करेगा। कलम नवीस के मुताबिक भर्ती की तादाद इस सतह से कम है जो ईरान में बर्री हमले के लिए दरकार होगी। ईरान के 31 सूबाई कमांडो और इसकी मुसिक दिफाई हिकमत अमली के खिलाफ कामयाबी ज़मीनी मुहिम के अंदाजे 7,50,000 से 1.5 मिलियन अमरीकी फौजियों के दरमियान हैं। موجودہ فعال امریکی فوج کی نفری تقریباً 4,52,000 ہے، یہ حساب واضح طور پر نہیں بنتا۔ جاف کا کہنا ہے کہ امریکی تاریخ ایک قابل قبول راستہ پیش کرتی ہے روایتی جبری جنگ بھرتی کی بجائے قرضہ معافی پروگرام کے ذریعے بھرتی۔
1: اسرائیل کے انتہا پسند وزیر بن گوی نے غزہ سے 18,00,000 فلسطینیوں کی نسل صفائی کرنے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے وزیر برائے قومی سلامتی اور یہودی پاور پارٹی کے

0: इतमार बिन कुवैद ने मासूर गजा के रहायशी 18,60,000 फलस्तीनों को 7 साल के अरसे में नामनहाद रजाकराना हिजरत के तहत इलाके से निकालने का मनसूबा पेश किया है। इसराइल फ़ज़ाए अपला की खबरों के मुताबिक बेन गवीन ने आइंदा इंतहाब मुहिम के सिलसिले में मुनक्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदड्रॉल 7 टन नामी मनसूबा मुतारफ कराया। मनसूबे में तीसरे मुल्क में आबाद किए जाने वाले फलस्तीनों के लिए एहतियात के फ्राहमी अमल की निगरानी के लिए खसूसी वजारत कायम करने की तजवीज़ भी शामिल है। मनसूबे के मुताबिक पहले साल 2,50,000, 3 साल के अंदर 11,10,000 और 7 साल के इख्तिताम तक मजबूरी तौर पर 18,60,000 फलस्तीनियों को गजा से निकालने का हदफ मुकर्रर किया गया है।
1: अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने इसराइल का बाइकाट करने या अपने तलबा को इस मुल्क के साथ एक्सचेंज प्रोग्रामों में हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश करने वाली यूनिवर्सिटियों के खिलाफ पाबंदियों का बिल मंजूर कर लिया है। ये बिल रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एजेंडे पर लाया गया था और 237 के मुकाबले में 169 वोटों से मंजूर हुआ। इस दौरान 33 डेमोक्रेट ने अपनी पार्टी के बाकी अरकान से हटकर इसके हक में वोट दिया है। सिर्फ 2 रिपब्लिकन अरकान ने बिल के खिलाफ वोट दिया और अब इसका अगला मरहला सेनेट में होगा। इस बिल के तहत वो इदारे जो वफाकी फंड हासिल करते हैं इन पर लाजिम होगा कि वो किसी भी शक्ल में इसराइल का बाइकॉट न करें और अपने तलबा को इसराइल के साथ एक्सचेंज प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की पाबंदी ना करें। अगर ये बिल सेनेट से मंजूर होकर सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत से कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया तो ये इसराइल का बाइकाट करने वाली यूनिवर्सिटियों को वफाकी फंड से महरूम कर देगा।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। बतानवी शहरी तंजीम हुकूमत से मुतालबा किया इसराइल के हवाले से अपने पॉलिसी में तब्दील लाए। फलस्तीन से इजहार यकजहती मुहिम के तहत 55,000 दस्तखतों के हामिल खत ने वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से वज़्ज़म होने जराइम के बारे में इसराइल से जवाबदेही का मुतालबा किया है। फलस्तीन से इजहार यकजहती मुहिम की नायब सदर रियो का बिनार्ड अदाकार जूलियट स्टीवनसन और बतानवी फलस्तीन कमेटी की सरबराह सारा हुसैन यह खत माह जुलाई में ओहदा संभालने वाले वज़ीर-ए-आज़म एंडी बन्नहिम तक पहुंचाया। शहरी तंजीमों के नुमाइंदे ने अपने बयान में इस बात पर जोर दिया बरतानी को बैन अवी कानून और फलस्तीन के हकूक के तहफ़ के हवाले से अपना मौकफ तब्दील करने की जरूरत है। खत में नई हुकूमत से मुतालबा किया गया वो गजा में नस्ल कुशी जारी खिलाफ वर्जियों के इल्जाम के जवाब में ठोस इकदाम उठाए। अवाम की तोजा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के रद्दअमल नई हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर मरकूज है।
1: जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने जनूबी लुबनान पर फजाई तोपखाना और जमीनी हमले तेज कर दिए हैं। इसराइली जंगी तैयारों ने तायर के जनूब में अल मंसूरी कस्बे पर मुतअद्दिद फजाई हमले किए। इसके साथ ही कस्बे को तोपखाना की गोलियों का निशाना बनाया गया और बताया गया है कि इसराइली फौजी गाड़ियां इस इलाके में धमाका खेज मवाद से भरे कंटेनर ले जा रही हैं और फौजी दस्ते कस्बे में पेशकदमी कर रहे हैं। नप्तिया मर्जियोन और बिनते जबील के इलाके भी शदीद बमबारी की जद में हैं। बताया गया है कि इसराइली फोर्सेस ने नप्तिया में घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने के लिए ज्यादा बारूदी बैरल बमों का इस्तेमाल किया है जबकि खासिका में इसराइली फौजियों ने शहरियों के घरों को घेरे में ले लिया है। इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 4,000 से तजावुज कर गई है। 12,000 से ज्यादा जख्मी हैं और 10,00,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं।
0: एस्टोनिया के वज़ीर-ए-दफ़ा हानो पियो कोरो ने यूक्रेन के लिए तोपखाना गोला बारूद की खरीदारी से मुतल्लिक 7 करोड़ यूरो के मुआहदे के तरसीली अमल में पैदा होने रुकावटों के बायस तहकीकात शुरू होने के बाद इस्तीफा दे दिया। पियो कोरो 2022 से वज़ीर-ए-दफ़ा के अहदे पर फायज थे। उन्होंने 2 सितंबर को सरकारी नशरियाती इदारे ETV पर अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए इस स्कैंडल का भी जिक्र किया। पिकोर ने फेसबुक से जारी बयान में कहा एक रहनुमा में इतनी ताकत हौसला होनी चाहिए वो जिम्मेदारी कबूल कर सके। उन्होंने मजीद कहा नेशनल ऑडिट ऑफिस की तहकीकात के नतज ने सियासी जिम्मेदारी के हवाले से मुतद्दद सवालात उठा दिए हैं। नेशनल ऑडिट ऑफिस ने 28 अगस्त को जारी करता एक रिपोर्ट में हालिया बरसों के दौरान वजारत दिफा की तरफ से की जाने वाली दिफाई खरीदों पर तनकीद की और खबरदार किया गया कि एस्टोनिया को हुकूमती बजट पर 7 करोड़ यूरो की लागत बर्दाश्त करना पड़ सकती है। एस्टोनिया की रोजनामा एस्टी एक्सप्रेस के मुताबिक 2024 में भारतीय कंपनी नेको डिफेंस म्यूनिटेशंस की जेर मुल्कियत स्ट्रीम रजिस्टर्ड कंपनी दत्ता सेल SRL के साथ गोला बारूद की खरीदारी का मुआहदा किया था।
1: अर्जेंटाइन के सदर हावियर मेली ने कहा है कि फॉकलैंड्स के मामले में तब्दीली की हवाएं हमारे हक में चल रही हैं। मेली ने कहा है कि फॉकलैंड्स जजायर

मौजूदा तहलील सिर्फ एक सियासी तरजीह का नहीं बल्कि बरसों के दौरान तब्दील होने वाले अस्करी तवासुन का भी नतीजा है। शाम में बदलता हुआ मंजरनामा YPG की पोजीशन को कमजोर करने वाली अहम तरीन पेशरफ्तों में से एक शाम में ताकत के तवासुन में तब्दीली थी। दिसंबर 2024 में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद एक नया सियासी निज़ाम सामने आया। तुर्की की जानब से शाम की नई हुकूमत को जी जाने वाली हिमायत ने YPG के मुस्तकबिल को बराह रास्त मुतासिर किया। YPG एक तवील अरसे तक ये समझती रही कि इसे अमरीकी हिमायत हासिल होती रहेगी। ताहम सदर रजब तैयब एर्दोगान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी ताल्लुक और वाशिंगटन की जानब से शाम में अपनी फौजी मौजूदगी कम करने के रुझान ने इस हिसाब किताब को तब्दील कर दिया। तुर्की ने यह ऐलान भी किया कि जरूरत पड़ने पर वो शामी हुकूमत को फौजी मदद फराहम कर सकता है। यूं YPG के लिए एक तरफ अमरीकी हिमायत में कमी और दूसरी तरफ तुर्की की हिमायत याफ्ता दमिश्क हुकूमत के साथ मुमकिन तसादुम के बायस कार्रवाई की गुंजाइश बतदरीज महदूद होती गई। अंकरा के अहम तरीन अहदाफ में से एक ये था कि YPG एक आज़ाद या मुस्तकिल मुसल्लह ढांचे के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखने की बजाय शामी हुकूमत के सियासी और सिक्योरिटी इदारों में जम हो जाए। अस्करी फतेह से सियासी हल की जानब एक लिहाज से इस अमल में शामिल तकरीबन हर फरीक PKK के तहलील होने से फ़ायदा उठा सकता है। तुर्की कई दहाइयों से जारी दहशतगर्दाना सरगर्मियों का खात्मा कर सकता है। इससे शाम और इराक की सरजमीन पर पायदार इस्तेहकाम से फ़ायदा पहुंच सकता है। दूसरी तरफ कुर्द बरादरियां तशद्दुद में कमी और किसी मुसल्लह अलहदगी पसंद तहरीक के बगैर एक सियासी मुस्तकबिल की उम्मीद रख सकती हैं। ताहम हर इलाकाई फरीक इस नतीजे का खैर मकदम नहीं कर रहा। खुसूसन इसराइल तारीखी तौर पर ऐसी तंजीमों को तुर्की और शाम जैसी रियासतों के खिलाफ मुमकिन स्ट्रेटेजिक शराकत दारों के तौर पर देखता रहा है। इसके पीछे कारफरमा मंतक निस्बतन सादा है और वो ये कि इन हुकूमतों की मुखालफत करने वाली तंजीमें मुमकिन तौर पर इनके खिलाफ एक मुफीद तवासुन पैदा करने वाले उनसर के तौर पर काम कर सकती हैं। तुर्की ने शामी हुकूमत की हिमायत की, YPG को दी जाने वाली हिमायत कम करने के लिए वाशिंगटन के साथ तआवुन किया और शायद सबसे अहम बात ये कि इसने YPG को शामी रियासती इदारों में जम करने की हिमायत की। मकसद ये था कि इस गिरोह को मुस्तकिल खुद मुख्तारी के हुसूल की बजाय शाम के नए सियासी और सिक्योरिटी ढांचों में जम होने पर आमादा किया जाए। नतीजतन इसराइल YPG को कबल अजीम वाशिंगटन का अदा करदा स्ट्रेटेजिक किरदार अदा करने वाला फरीक नहीं बना सका। ताहम इसका यह मतलब नहीं कि इसराइल शाम के मंजरनामे से दस्तबरदार हो गया है। जुनूबी शाम के बाज़ इलाकों में इसराइल की फौजी मौजूदगी और दुरुस्तबरदारी के साथ इसके ताल्लुकात अब भी तब्दील होते हुए इलाकाई तवासुन के अहम अनासर हैं। ताहम दमिश्क के लिए तुर्की की हिमायत के साथ इस मसले को हल करने का इम्कान एक अहम स्ट्रेटेजिक कामयाबी है। लिहाजा PKK YPG का तहलील होना एक ऐसा अहम मोड़ साबित हो सकता है जिसके असरात तुर्की की सरहदों से कहीं आगे तक फैल सकते हैं। अंकरा की जानब से अस्करी दबाव सफारतकारी और सियासी राबताकारी को बयक वक्त इस्तेमाल करने के नतीजे में तुर्की इराक और शाम में तंजीम की सरगर्मियों और नकलो हरकत की गुंजाइश बतदरीज महदूद होती गई। अगर ये अमल कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो इसके नतायज PKK की दहशतगर्दाना सरगर्मियों के खात्मे से कहीं ज्यादा वसी हो सकते हैं। तुर्की चार दहाइयों से जारी दहशतगर्दाना हमलों के बाद अपने तमाम शहरियों के दरमियान ज्यादा मुस्तहकम ताल्लुकात के साथ इस अमल से निकल सकता है और शाम और इराक भी तंजीम के खात्मे से फायदा उठा सकते हैं। वसी तनाजुर में देखा जाए तो PKK YPG का खात्मा इस बात की मिसाल बन सकता है कि पायदार अमन के क्याम के लिए सिर्फ अस्करी फतेह काफ़ी नहीं होती। अगर ये अमल कामयाब होता है तो ये तुर्की शाम और इराक में इस्तेहकाम के एक नए दौर का आगाज बन सकता है और ईरान समेत मशरक़ वस्ता के वसी तर खित्ते के लिए भी इसके दूरस नताइज बरामद हो सकते हैं।